आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है हा, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना किता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्ना दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: शाबाश, पर जे तुहानू कदे डर लगे भी उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ये वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: चाय तो नहीं गिननी।
1: ओए, इता काफी गंभीर है, जिना मैं सोचिया भी नहीं सी।
2: जिन कौर नू होर आत्मविश्वास महसूस होंदा है, जिवें जिवें उस नाल धक्केशाही करन वालियां नू उस दी शक्ति दा एहसास होंदा है।
0: मैं एक अध्यात्मक राजे दी धी हां, ते ए जो मेरे सिर ते है ए मेरा ताज है। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा जे तुहाडे वर्गे हजारा मेरा विरोध करदे हन। मैं हारांगी नहीं, मैं सब नाल मिल जाण दी कोशिश बिल्कुल नहीं करांगी, क्योंकि मैं पैदा ही वक्री दसन लई होई हां। पर जे तुसी मेरे नाल दोस्ती करना चाहो, उस विच कोई दिक्कत नहीं।
2: कुड़ियां जिंद कौर वल अचंभे नाल वेखदियां हन।
3: ठीक है, वाह, दरअसल असी कदे किसे नूं इदां नहीं वेख्या।
4: मेरा मतलब केवल कुछ गुंडे जो फिल्मां विच हुंदे हन है।
0: तुसी फिर सही फिल्मां नहीं देख रहे हैं। मेरे चाचे ताए ते मम्मी पापा भी दस्तार सजाउंदे हन। मेरा परिवार मेहनत करदा है ते लोड़वंदा दी मदद भी करदा है। जेकर तुसी भुखे हो, तुहानू पता है तुहानू किदे कोल जाना है। उन्होंने दस्तारा सजाइया होणगीआं। मैं इस करके दस्तार सजाउंदी हाँ ताकि मैं वार वार अपने आप नूं चेते करवा सकां कि मैं कोमल नहीं बल्कि बहुत बलवान भी हाँ। मैं एक योद्धा भी हाँ ते एक शहजादी भी हाँ, ते मैं इत्थे होरां दी मदद करन लई हाँ।
4: वाह, सानू नहीं पता सी कि इसका कितना गूढ़ा अर्थ है।
1: हाँ, इते असल विच बहुत वधिया जापदा है।
3: हाँ, मैं ते बहुत प्रभावित हुई हाँ, असी तुहानू गलत परख्या।
0: मैं अरदास करदी हाँ कि असी कोमल ते शक्तिशाली औरतां बनीए जो इस दुनिया नू रोशन कर देन। मैं तुहानू जान के बहुत खुश होवांगी जे तुसी चाहो।
1: एहो जापदा है, तुहानू भी बहुत कुछ जानकारी है, असी भी थोड़े बारे होर जानना चाहवांगे।
4: कि आज तुसी खाने लई साडे नाल बैठना पसंद करोगे?
0: हां जी, क्यों नहीं है।
2: ते सारियां कुड़ियां हुण एक नवी सोच नाल अगे वधदियां हन। जदों असी बीबी शरण कौर वर्गे शहीदां नाल जुड़दे हां, पूरी कायनात विच ऐसा कुछ नहीं जो सानू बदल सके जां डरा सके।
5: असी हमेशा लोड़ पैण ते अंग संग सहाई हुंदे हां। असी शहीद इत्थे गुरु दे प्यारियां दी राखी लई सदा मौजूद हां। अपने सिक्खी दे प्रेम लई सदा दृढ़ रहो ते असी भी तुहाडे नाल रहांगे।
2: असी यह हमेशा याद रख सकते हां कि गुरु गोबिंद सिंह जी साडे पिता हन ते माता साहिब कौर जी साडे माता जी हन।
6: खुशियां दे जयकारे गजावे सो फतेह पावे शहीदां सिंघां सिंघणियां दे मन।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानदी सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिल्कुल ठीक है।